जनाका आया या या या या या निहातला संकरुना बरलेंगां पनुग गाया मनावान गादिस मांजा लिहात तू गादिस गलीसा तंपाक्या हा हा हा tertawan sang kerunanan indah dari mambonya ayaya ayaya ayaya mata bertemu mata